0: ली,
1: मैंने हंसकर हामी भर ली।
0: ओ यारी छूटे ना,
1: टूटे ना,
0: हाँ कर ली तो कर ली।
1: या कह मारू थे या बाबा,
0: चाहे सर पूरा।

ताली ताक धुम ताक ताली ताक जम ताक झाला आंबो ताक झुगी ताक ताडी गेने तू ताक नाक ताक झुम ताक नाक नाक झुम ताक नाक नाक झुम ताक नाक नाक झम तारी ता जग तारी ता जन जाने को कुदारी दाबु तारी गेने ताक झुम तारी ता जग तारी ता जन जाने को कुदारी दाबु तारी गेने जम तारी

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

तुझको देख के सूट बूट खोया ना मैं जगा ना मैं सोया कजरा कजरा कजरा रे दिस टाइम फनी वन मिनट ऑन हिमेश रेशमिया हियर बाय द वन एंड ओनली उजाला रेडियो इट इज मेरा और आपका साथ लाते हुए लेकर गनीते फ्रॉम द हिलके गाना हियर ऑन द वन एंड ओनली उजाला रेडियो आई द फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D आउट इट यार 2019 पूरा लंदन एवं टाइम फॉर अ लेकर पंजाबी फ्लेवर

और जहां आप उजाला रेडियो सुन रहे हैं, लगदी लाहौर दी गाना का नाम है। दैट वाज द सिम्फनी, निमंत मेरे दान गुरु रंधावा, गब्राहता द फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D।

एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना. फिल्म का नाम है पति पत्नी और वो uit het jaar 2019. En dat was de geweldige stem van niemand minder dan Roshan Koli, Arijit Singh en Neha Kakkar. जहां आप मुझे सुन रहे हैं, दिस इज उजाला रेडियो. आई होप यू एंजॉय द गाना, आई होप यू लाइक उजाला. Ik zou zeggen, geef ons ook een like op Facebook, volg ons en je bent voor altijd op de hoogte van alle nieuwtjes.

दिल जानिए मैनू जी ले दे। दिस इज एम्फन जुबिन नौटियाओ एंड तुलसी कुमार एंड द फिल्म खानदानी ए शेफ खाना। एंड इन डेज फिल्म स्पेलर ऑन द अंदर सोनाक्षी सिन्हा बादशाह एंड वरुण शर्मा।

0: दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी सुपर रेडियो हैज़ टू बी उजाला रेडियो। आई होप यू एंजॉयड गाना। सो से गनीत, ऑनस्पन एंड रिलैक्स।
1: लव यू।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तुझ

Namaskar, assalamu alaikum, sastriya kaal, een hele goede morgen. Van harte welkom bij Ujala Radio. Het is inmiddels geworden 9 minuten over 9. En u bent afgestemd op Ujala Radio. Het is woensdag 23 september 2026. Namaskar, assalamu alaikum, sasri akal. बेहद ही प्यार के साथ आपको स्वागत करते हुए उजाला रेडियो के प्रोग्राम में सुबह के प्रोग्राम है तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ

रब ने भेजा है तुम्हें दुनिया में मेरे लिए वो दिल दिल ही क्या है, वो दिल दिल ही क्या है जो मिलने की दुआ ना करे, हम तुझको भूल कर जिंदा रहे कभी खुदा ना करे। एक शुभ और मुबारक सुबह आप सभी को पेश है, लवली लवली मॉर्निंग आगाज करते हैं अरमा मालिक की आवाज़ में।

अरमा माने एक प्यार ना करना, लोगों ने बहुत हमसे कहा, लोगों ने बहुत हमसे कहा प्यार ना करना, बेताबी दिल का कभी इकरार ना करना। वो सामने जो आए उन्हें कुछ ना बताना, वो सामने जो आए उन्हें कुछ ना बताना, दिल में छुपे जज्बात का इजहार ना करना। लोगों ने बहुत हमसे कहा प्यार न करना, बेताबी ये दिल का कभी इकरार ना करना। बांसुरी अरिजीत सिंह की आवाज़ में आप सुनोगे तुलसी कुमार एंड अली सेठी।

तेरा पूरा बस तुझसे हो वे अरिजीत सिंह लवली सॉन्ग तुलसी कुमार अली थी। एक बेहद ही खूबसूरत गीत है अल्फाज पर अगर आप ध्यान होंगे कि अगर एक है तो आधा है, अगर दो हो तो पूरा हो जाए जिंदगी के लिए। खुद से बेभर के उस पे एतबार ना करना, खुद से भर के उस पे एतबार ना करना, टूट के बिखर जाओगे इस राह उल्फत में। कभी वफा के लिए उनसे तकरार ना करना, कभी वफा के लिए उनसे तकरार ना करना, तुम जान से जाओगी यू कर के भरोसा, तुम जान से जाओगी यू कर के भरोसा, महबूब के वादे पर, महबूब के वादे पर एतबार ना करना। लोगों ने बहुत हमसे कहा कि प्यार ना करना, बेताबी ये दिल का कभी इकरार ना करना। ओ माही

इरशाद कामिल के कलम से निकले हुए खूबसूरत अल्फाज आपने सुना फ्रॉम द फिल्म डोंकी। आपको याद होगा इस फिल्म में काम किए शाहरुख खान। दर्द मेरे दिल का कोई न जाने, दर्द मेरे दिल का कोई न जाने, ना कोई मेरी वफा पहचाने। जिसका सहारा बना था कभी मैं, जिसका सहारा बना था कभी मैं, वो ही लगी दिल दुखाने। दर्द मेरे दिल का कोई न जाने।

और अगर कोई बेपनाह चाहे। जी रही हूँ मैं आपके दम से, जी रही हूँ मैं आपके दम से, चलती है सांस तेरे नाम से, मैं और क्या मांगू तेरे नाम से। Een hele goede morgen, Artie. En die zit te luisteren in België. Nidiana natuurlijk al naar school gebracht.

0: मिस्टर शेर सिंह दनाख में। वेरी गुड मॉर्निंग।
1: पीने का मौसम है पीना
0: चाहिए। लीना एंड एम्स खदी फनार्ट वेलकम।

आदत है बस तेरी आदत है, अरिजीत सिंह एंड मीत ब्रॉस के साथ पर। कुछ इस तरह से मैंने अपना जीवन सजा दिया, कुछ इस तरह से मैंने अपना जीवन सजा दिया, तेरे इनकार को अपनी नई तकदीर बना लिया, तेरे इनकार को अपनी नई तकदीर बना लिया, कर दी सारी दुनिया तेरी इस हसीन मुस्कुराहटों के नाम, और कुर्बान है तेरे चेहरे पर मेरे सुबह और शाम। समझ नहीं पाते तेरे आँखों के इशारे को, समझ नहीं पाते तेरे आँखों के इशारे को, और नहीं जुल्फों के काले अंधेरे को, चाहत है सिर्फ चंद प्यारे लम्हों की, चाहत है सिर्फ चंद प्यारे लम्हों की, जिन्हें अपने मेरे हाथों से, जिन्हें आपने मेरे हाथों से मिटा दिया, कुछ इस तरह से मैंने अपना जीवन सजा लिया। जुबिन नौटियाल की आवाज़ में आप सुनोगे।

तेरी सांसों में ऐसे बस जाऊं कि कोई जुदा हमको ना कर पाए। इतना प्यार मत कीजिए यार, इतना प्यार मत कीजिए यार कि हम खुशी के मारे मर जाए। Een hele goede morgen, Satya. Ook van harte welkom bij ons. En wij van Ujala Radio wensen u een hele mooie dag en een aangename luisterstemming toe.

लुत्गये जुबेन नौतिया से। और आप लोग व्हाट्सएप करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी कहते हैं आप सभी को, आप प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। घड़ी की तरफ देखूँ तो 8 मिनट बाकी है 10 बजने में, 8 मिनट 4 3 10 बजे के कमर्शियल आप सुनोगे और उसके बाद में आप सुनोगे कॉफ़ी टाइम स्पेशली उन लोगों के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं साथ कॉफ़ी पीने के लिए। अगर खुदा रुक जाए तो मैं सजदा करूं, अगर खुदा रुक जाए तो मैं सजदा करूं, अगर सनम रुक जाए तो मैं क्या करूं। तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो बताओ मैं क्या करूं।

फिर से बाहों में आज बाहें हैं, फिर से बाहों में आज बाहें हैं, उन निगाहों में आज निगाहें हैं। ठहरो चांद को छिप जाने दो, ठहरो चांद को छिप जाने दो, रात भर राहें अपनी राहें हैं। मिले हो तुम हमको बड़ी नसीबों से, टोनी कक्कर एंड नेहा कक्कर की आवाज़ों में। हाय मधु, एन हेल गोये मॉर्गन एंड वेलकम बाय ons, मधु वनुइट रोटरडम। एन आई सी हियर अल एन कॉपी कॉफी स्टैन, या कम्स एराउंड ना द कमर्शियल्स फ्रॉम 10 uur। En Romeo Host is aan het luisteren in Amsterdam Zuidoost. Een hele goede morgen. En welkom met You Are.

तुम मिलो तो सही। इट्स कॉफी टाइम। तो आप लोग ने तैयार रखे अपने कॉफी, चाय, शरबत, जो भी आप पीने वाले हैं। सो लेट्स एंजॉय इट टुगेदर। Cheers। हाय, ये फोन दौलत।

0: तुम मिलो तो सही, तुम मिलो थोड़ा गपशप करे, मीठी मीठी बातें।
1: It's not about a coffee.
0: एक कप कॉफी या चाय के साथ।
1: It's

और उजाला रेडियो के ज़रिए हम मिल रहे हैं, साथ में कॉफ़ी पी रहे हैं, गपशप कर रहे हैं व्हाट्सएप पर। आप बता रहे हैं आपके शहर का मौसम कैसा है, मैं बता रही हूँ कि आम्स्टर्डम का मौसम इस वक्त बदली छाई हुई है अभी, तो हो पड़ा तो सोनो खानजीन फनाख।

हैरते आशिकी जावेद अली एंड आकांक्षा से आपने सुने हैं। जुबिन नौटियाल

पास आना तेरा और फिर खिल जाना तेरा, चिर जाना अगर जाना होता है मेरा। जुबिन नौटियाल, याद है ना वो रात के कोहरे में नजर आता है, वो रात के कोहरे में नजर आता है, एक दर्द उसकी बातों में नजर आता है। छिपाए भी जो छुप ना सका, छिपाए भी जो छुप ना सका, वही प्यार उसकी आंखों में नजर आता है। En Roy zegt het is ook bewolkt in Zweden. Same, same here. Het zonnetje probeert door te breken.

0: मैं अगर सितारों से चुरा लूँ रोशनी, फिर भी तेरी कमी को पूरी नहीं करेंगे। चांद से बरके है चांदनी, चांद से बरकर है चांदनी, चांदनी से बरकर है रात, रात से बरकर है जिंदगी, रात से बरकर है जिंदगी, और जिंदगी से बरकर है आप।
1: अकेले अकेले

0: ही यार मेरा अरिजीत सिंह एंड नेहा कक्कड़ से उजाला रेडियो है ये कविता रानी के साथ एक शुभ और मुबारक सुबह आप सभी को पेश है। आप जहां पर भी हो जिस हाँ में हो प्रोग्राम को सुन रहे मेरी आवाज़ को सुन रहे मेरा प्यार भी आपके दिल तक पहुंचे और शायद आप गाड़ी में हो रास्ते पर हो तो रास्ते के हालात पर ज़रूर ध्यान देना और आपका सफ़र सफल हो। You drive safe and remember, WhatsApp मत करना अगर आप तार भी करते हो तो hands free। आजकल इतनी याद is so makkelijk voor de mensen, maar dan zal je toch zien dat iemand aan het WhatsApp is tijdens het rijden. Het is zo handsfree gemaakt en via Bluetooth allemaal kan inspreken, voice text, maar toch zou je zien dat de mensen achter het stuur aan het bezig zijn op hun zo actief bezig zijn op hun telefoon in het verkeer vaker gezien. Tumhare raaton ka main hi to khwab hu. Tumhare raaton ka main hi to khwab hu. तुम्हारे सवालों का मैं ही तो जवाब हूँ पर तुम्हें कुछ पता नहीं पर तुम्हें तो कुछ पता नहीं अभी तुम्हें बताना है क्या। अगला गीत आप सुनोगे
1: सुनो ना संग मरमर
0: वही जानी पहचाने आवाज़।

सुनो ना संगे मर मर के ये मीनारे जीत गंगुली ने सांस सजाए हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में। कौसर मुनीर के कलम से निकले हुए खूबसूरत अल्फाज आपने सुने फ्रॉम द फिल्म योंगिस्तान। जैकी भगनानी एंड नेहा शर्मा ने इस फिल्म में काम की है विथ फारूक शाइक एंड बोमन ईरानी लीड रोल में।

0: ये आपके लिए।
1: थैंक्स
0: मेघा जी, आई एम अ पेंटर।
1: आई नो, आई जस्ट लव पेंटिंग्स।
0: ऐसा है कि मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। अपनी पेंटिंग के जरिए दुनिया को हिंदुस्तान दिखाना चाहता हूँ। दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में कितनी खूबसूरती है। मेघा जी,
1: हाँ, कब से?
0: कल से।

0: कुछ ऐसा था आपका मिजाज कि हम अपने होश गवा बैठे। जब आप आए हमारे दरवाजे तो हम अपनी जिंदगी लौटा बैठे।
1: जब आए हमारे दरवाजे तो हमने जिंदगी लौटा बैठे। मोहब्बत है तुमसे, और किसी को अगर मोहब्बत है और दूसरे को पता ही नहीं चला तो ऐसे में होता है क्या? तेरी आंखों के महफिल में मेरा प्यार नाच रही है और वो भी खुलेआम।
2: तेरी धड़कने
1: अब तो मुझे अपना लो,
2: मुझे खोना
1: या कर दो मुझे बदनाम।

मुझे कैसे पता ना चला कि तू मुझे प्यार करता है, मुझे कैसे ना पता चला कि तू मेरा इंतजार करता है। जबरदस्त, तुम्हारी ये कस्में कब हमको खा जाए, ये सपने कब हमें धोखा दे जाए, ये कस्में कब हमको खा जाए, ये सपने कब हमें धोखा दे जाए, ये हवाएं कब अपना रुख बदल दे, ये खुशियां कब हमसे मुंह फेर ले, बस इन्हीं सवालों का जवाब मिल जाए, पर कब।

शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रोग्राम भी सुन रही है रीता सुतर मीर में, सलीम मर्चेंट सोनू एंड श्रेया घोषाल की आवाज़ों में इस बार आ रहा है आतिफ असलम आपके लिए।

ओ रे पिया तरसे जिया आतिफ असलम की आवाज़ में आपने गीत को सुना। तो कमर्शियल ब्रेक होने वाला है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के उस पार, मिलेंगे आपसे।

तुम्हें तुम हो मेरी निगाह में। एक बार फिर से आपको बेहद ही प्यार से स्वागत करते हुए उजाला रेडियो के प्रोग्राम में तहे दिल से खुश आमदीद कहती हूँ। एक शुभ और मुबारक सुबह आपको पेश है। आप जहाँ पर भी हो, जिस हाव में हो, प्रोग्राम को सुन रहे, मेरी आवाज को सुन रहे, मेरा प्यार भी आपके दिल तक पहुंचे। रास्ते पर अगर आप हो तो गाड़ी को संभाल कर चलाना, आपका सफर जरूर से सफल हो।

और अब ने भेजा है किसको किसके लिए, दुनिया में मेरे लिए, दुनिया में तेरे लिए। जिस पर जचता है मुंह ही पर जाए, Het is woensdag 23 september 2026. कितने कम दिन बाकी है इस साल में। ये साल भी बहुत ही रफ्तार से गुजर रही है और भी गुजर जाएगी। 10 मिनट हो गए हैं 11 बजकर, स्टूडियो टाइट 10 मिनट ओवर ऑफ। आतिफ असलम

ओ साथी ओ राही, और इस वक्त प्रोग्राम सुन रही है रवीना है रवीना नहीं लखू ये मर्ख, और साथ ही साथ में अंजुली देश से उसफिशा वो अंजुली नाम उस रवीना बॉय के एन अंजनी।

तुझे कितना चाहने लगे हैं हम अरिजीत सिंह एंड स्पेशली फॉर अंजुली गोपाल या नाम शलीफा मामा एंड पापा एंड यसिस चाहने लगे हम रवीना बॉय कैन अंजना या अंजनी यार नाम लाइक वे सो फेल ऑफ एलकार अंजुली एंड अंजनी तुम इतना खूबसूरत हो कि ये सारा जमाना तुम पे फिदा है।

तुम इतना खूबसूरत हो कि ये सारा जमाना तुम पे फिजा है। तुम इतना खूबसूरत हो कि ये सारा जमाना तुम पे फिदा है। सोचा हमने कि मांग लेंगे खुदा से, सोचा हमने कि मांग लेंगे खुदा से, लेकिन क्या करें, खुदा भी तुम पे फिदा है। हे तीरथ मेरी, तू आपने सुनी विनीत शबाब साबरी, विनीत शबाब साबरी एंड पलक मुचाओ के जरिए तीरथ मेरी। तू रिया कालू अथार्थ अमस्तरम फनहार्थ वेलकम बाय उन्स। और अगर मैं घड़ी देखूँ तो कुछ लगभग 30 मिनट बाकी है मेरे हिस्से के प्रोग्राम में, तो इस हिस्से के प्रोग्राम में आप ज़रूर से कुछ पुराना गीत भी सुनोगे। आँखों की जुबा वो समझ नहीं पाते, आँखों की जुबा वो समझ नहीं पाते, होतों से हम भी कुछ कह नहीं पाते। अपनी बेबसी हम किस तरह कहें, अपनी बेबसी हम किस तरह कहें, कोई है जिसके बिना हम रह नहीं पाते। अगर नजर नजर मिले

रेशमा सुबह से सुन रही है प्रोग्राम। रेशमा एंड विनोद चकौरी आप दोनों के लिए एंड कुशिश नतुलक। फॉर रीतिका

नजर नजर ढूंढे उसे, आएगी एक दिन मेरे सामने, उड़े नारायण सपना मुखर्जी की आवाजों में आपने गीत को सुना है। सत्या भी प्रोग्राम सुन रही है आज सुबह से इफोन दौलत आप दोनों के लिए पेश है। हेनोक रिया कालू एट हार्चे अम्स्टरडम, बस आप हमारे साथ बने रहो। याद सोने साल दो खबरों का मोई वेर ओखीर एन अम्स्टरडम।

वो प्यार प्यार प्यार प्यार प्यार प्यार वो दिले आशिकी वो तस्वुर का आलम उदित नारायणन अलका यज्ञिक रीता सूतरमेर में प्रोग्राम सुन रहे हैं चुपके चुपके चोरी चोरी और साथ ही साथ में परिवार बिहारी के लिए जो ब्रेडा में प्रोग्राम सुन रहे हैं

हे तुमने कभी किसी से प्यार किया है, किसी का एतबार किया है? और अगर किया है तो सही किया है।

पद्माश्री मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने गीत को सुना, ओ प्रिया कौन है जो सपनों में आया। एंड स्पेशली मैंने पेश किया अरुण और उनकी बेटी आलिशा कन्हाई के वास्ते। ये लोग प्रोग्राम ब्रेडा में सुन रहे हैं। अवसर अवसाइट ओज में भी लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो हमारा सलाम वहाँ तक पहुँचे, हमारा नमस्कार आप सभी तक पहुँचे। देनहा में लोग लगातार प्रोग्राम को सुन रहे हैं। उजाला रेडियो है ये, कविता रानी के साथ पुराना गीत पेश है पुराने गीतों के शौकीनों के वास्ते। तो आपके लिए सेलेक्ट की है एक गीत लता जी की आवाज़ में।

मेरा अंग अंग मुस्काया लता जी एंड मुकेश जी से, जाने ना नजर पहचाने जिगर, और कितना जल्दी से ये वक्त गुजर गया है। 6 मिनट बाकी है 12 बजने में, दैट हार्ट अलमाउ सो स्नेल, और वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी जल्दी जल्दी गुजर रही है। पद्माश्री मोहम्मद रफ़ी, एक आखिरी गीत कर जाती हूँ मैं आप सभी के नाम, जो बेहद ही आनंद से, बेहद ही चैन से, बेहद ही आराम से प्रोग्राम को सुने हैं और मज़ा लूटे हैं या लुफ्त उठाए हैं।

तो आपका साथ ना हो तो हम कहाँ साथ देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, कहती है आपसे आपकी रानी। इसी दौरान हम फिर मिलेंगे आपसे जल्दी। आप अपना ख्याल जरूर रखना। It was fine om weer bij u te zijn. It was my pleasure. Tot de volgende keer. Namaskar, goedavond.

वो कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

साथ गमी है पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। ज़वाख के रहने वाले परिवार उमेद बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 85 साल की आयु में फैफन तख्त ख्यार औत। बहन मरखरित उमेद का भाई बहनोई वाल्दो उमेद का सार शरीदा रियाज और रहाना के मामा आरी का ममवा ससुर मिखा और काया के नाना होफ दौरप मानन बर्ग द्रीफ का रहने वाला श्रीमान रोनाल्ड हेनरी लक्ष्मण की मृत्यु हार्लेम के स्पार्न खास्ट हाउस में हो गई है। रोनाल्ड के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। ज़वाख के रहने वाले परिवार उमेद बहुत दुख के साथ सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 85 साल की आयु में फैफन तख्त यार औत। बहन मरखरित उमेद का भाई बहनोई वाल्दो उमेद का सार शरीदा रियाज और रहाना के मामा आरी का ममवा ससुर मेखा और काया के नाना होफ दौरप मानन बर्गद्रीफ का रहने वाला श्रीमान रोनाल्ड हेनरी लक्ष्मण की मृत्यु हार्लेम के स्पार्न खास्टहाउस हॉस्पिटल में हो गई है। रोनाल्ड के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया कल बीफे के दिन में 11:30 बजे मोरखन दोंदरदख 11:30 किए जाएंगे। क्रीमाटोरियम कैनमरलांट फिरखीर द वेख 271 हार्लेम में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-46-33-58-02 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार लक्ष्मण और परिवार उमेद के दुख में शामिल है।

और मृत्यु समाचार आप सुनिए अम्स्टर्डम और बाकी नीदरलैंड से परिवार मथुरा और परिवार बिंदेसरी सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 82 साल की आयु में त्वेन तख्त ख्यार औत लड़कन महेंद्र राम उर्मी सुरेश गीता मुकेश सुदेश और स्वर्गीय सुनील की माँ अनिल गायत्री शांता और अमीरा के सास सभी लड़कन के नानी आजी पर नानी और पर आजी अम्स्टर्डम वेस्ट की रहने वाली विधवा विल्मा मथुरा बिंदेसरी सिंह की मृत्यु ऑन द लीफोफ्रावास्टहाउस वेस्ट में हो गई है और जो कि स्वर्गीय श्री ब्रिजलाल मथुरा के विधवा थी। अम्स्टर्डम और बाकी नीदरलैंड से परिवार बिंदेसरी सिंह और परिवार मथुरा बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 82 साल की आयु में त्वेन तख्त ख्यार औत लड़कन महेंद्र राम उर्मी सुरेश गीता मुकेश सुदेश और स्वर्गीय सुनील के माँ अनिल गायत्री शांता और अमीरा के सास सभी लड़कन के नानी आजी पर नानी और पर आजी अम्स्टर्डम वेस्ट की रहने वाली विधवा विल्मा मथुरा बिंदेसरी सिंह की मृत्यु ऑन द लीफोफ्रावास्टहाउस वेस्ट में हो गई है स्वर्गीय श्री ब्रिजलाल मथुरा के विधवा जो थी। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज बुध के रात में 7 बजे से 8 बजे तक एटफार सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार के दिन में 3 बजे फ्रेदांद द्री उर किए जाएंगे क्रीमाटोरियम वेस्टखार्ड ओक मेरवेग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में। सूचना है कि निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्थ फुरसोरखिंग परिवार बिंदेसरी सिंह और परिवार मथुरा के दुख में शामिल है।

पहली बार जब मिले हैं तो उसके बाद में हाथों हाथ में चले हैं वगैरह वगैरह वगैरह। मोइन फान शान, अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए, और उजाला रेडियो के जरिए यहीं से हम शुरू करते हैं वही प्रोग्राम जिसका नाम है कॉफी चाय मेरा शो, आपके वास्ते हम ला रहे हैं सुन वालों। हम बात करने वाले हैं मैं आनंद चंदिका सिंह आज के न्यूज के बारे में, या कल के बारे में, या आने वाले दिनों के बारे में, या कॉमन मान के बारे के कुछ समाचार है जो हम आपसे बताने वाले हैं। नतीलुक मैं आनंद चंदिका सिंह जोमटेन ऑफ यू आर उजाला रेडियो वेलकम। आज का हेडलाइंस आप जरा सुन लीजिए। नेदरलैंडse economie blijkt sterker gegroeid dan gedacht. Het CBS heeft de groei in het tweede kwartaal naar voren bijgesteld. Niet 0,4, maar 0,6%. Vooral export en consumptie door huishoudens deden het beter dan eerder berekend. Er kwamen netto 15.000 banen bij. Huishoudens hebben iets meer te besteden. Het reëel beschikbaar inkomen, dus gecorrigeerd door prijsstijgingen, lag in het tweede

यू आर उजाला रेडियो, यहाँ सुन रहा हूँ उजाला रेडियो किसी प्रोग्राम कॉफी चाय मिला शो आप सुन रहे हैं. एंड सो मैं दान कॉम से आनंद चंद्रिका सिंह हियर इन द स्टूडियो, जिससे हम बात करने वाले हैं आज के न्यूज़ के बारे में, आने वाले दिनों के बारे में, या अंदर शॉर्ट ऑन द वेयर पर जो tijdens het programma die programma bananen mee aanjata is. En dan gaan we van links naar rechts. Van alles en nog wat komt dan ter sprake. Ujala's koffie, chai, middagshow mee. Goedemiddag allemaal.

उजाला रेडियो, यह है सुनोल और उजाला रेडियो के जरिए चलिए हम प्रोग्राम में आपको ये नगमा सुनाने को जा रहे हैं और वो ये नगमा होना चाहिए फिल्म का नाम हीरो और गाना का बोल है तू मेरा जानू है। वेल हम बोल सके कि वीरवा बहुत विशाल है यार, सिंस जोंदा इस वीर गवेल हेयर लग वीर

तू मेरा जानो है। हाँ सोची ला उन दिनों में या इन दिनों में, उन दिनों में या इन दिनों में के बोलत होएगा कि तू हमार हीरो बाटे। फिल्म हीरो का गाना भी आपने सुना है कि तू मेरा जानो है, तू मेरा हीरो है, जीरो नहीं लेकिन हीरो। एंड दिमाग

0: खुश करने के लिए उजाला रेडियो है 24/7 और वो भी स्पेशल आपके लिए।
1: उजाला सोना चिरैया चिरैया चिरैया।

कैसा लगा आज का प्रोग्राम आपको? अगर अच्छा लगा तो हम वादा करते हैं आपसे यहीं पर फिर मिलने के लिए।

0: लाल बेला उसका जमाना।
1: शाबाश मेरे शागिर्द।
0: थैंक यू। दुनिया पागल है।

यू आर उजाला रेडियो, यहाँ सुन रहा हूँ उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम कॉफी चाय मिदक शो आप सुन रहे हैं। एंड सो मेन दन कम्स आनंद चंद्रिका सिंह हियर इन द स्टूडियो, जिससे हम बात करने वाले हैं आज के न्यूज के बारे में, आने वाले दिनों के बारे में या अंदर शॉर्ट ऑन द वेयर पर जो tijdens het programma die programma banane me aanjata hè en dan gaan van links naar rechts van alles en nog wat komt dan ter sprake Ujala's koffie chai middagshow. Goedemiddag allemaal.

उजाला रेडियो के हैं, सुनो और उजाला रेडियो के जरिए चलिए हम प्रोग्राम में आपको ये नगमा सुनाने को जा रहे हैं और वो ये नगमा होना चाहिए। फिल्म का नाम हीरो और गाना का बोल है तू मेरा जानू है। वेल हम बोल सके वीरवा बहुत विशाल है यार, सिंस जोंदा इज इट वीर गवेल्डिग, हीरलिक वीर।

मेरा जानो है। हाँ सोची ला उन दिनों में या इन दिनों में, उन दिनों में या इन दिनों में के बोलत होएगा कि तू हमार हीरो बाटे। फिल्म हीरो का गाना भी आपने सुना है कि तू मेरा जानो है, तू मेरा हीरो है, जीरो नहीं लेकिन हीरो। एंड दिमाग

0: उजाला सोना चिरैया।
1: उजाला रेडियो को जहां पर भी आप चाहें आप हमेशा सुन सकते हैं रात और दिन।

तेरे बिना एक सजा है यार, सजा है तेरे बिना, ये जीना सजा है तेरे बिना। जुनिता गांधी की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो पर।

में पिघल जाओगे। इलास्टिनार उजाला रेडियो फॉर इंफॉर्मेशन कैक ऑफ www.ujala.nl एंड न्यू ज़हब हसन मैं जाना जिंदगी से नहीं जाना।

ए जाना जिंदगी से नहीं जाना, कभी नहीं जाना, नेवर। अब इतना सुंदर गीत के बाद मैं तो कहूंगा कि कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है और क्या सुनना है।

पूरा तोर दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होनेटरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

यू आर उजाला रेडियो, यहाँ सुन वाला उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम कॉफी चाय मिदक शो आप सुन रहे हैं। एंड सो मेन दम कॉम्स आनंद चंद्रिका सिंह हियर इन द स्टूडियो, जिससे हम बात करने वाले हैं आज के न्यूज के बारे में, आने वाले दिनों के बारे में, या अंदर शॉर्ट ऑन द वेयर पर जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बनाने में आ जाता है। एंड ऑन गाँव फॉन लिंक्स ना रेक्स van alles en nog wat komt dan ter sprake. Ujala's koffie, chai, middag, show. Goedemiddag allemaal.

उजाला रेडियो के हिस्सों और उजाला रेडियो के जरिए चले हम प्रोग्राम में आपको ये नगमा सुनाने को जा रहे हैं और वो ये नगमा होना चाहिए फिल्म का नाम हीरो और गाना का बोल है तू मेरा जानू है। वेल हम बोल सके कि वीरवा बहुत विशाल है सिंस जोंदा इस वीर गवेल हेयर लग वीर।

तू मेरा जानो है हम सोची ला उन दिनों में या इन दिनों में उन दिनों में या इन दिनों में के बोलत हो गया कि तू हमार हीरो बाटे फिल्म हीरो का गाना भी आपने सुना है कि तू मेरा जानो है तू मेरा हीरो है जीरो नहीं लेकिन हीरो एंड दिमाग नहीं चला लो

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

0: उजाड़ रेडियो के साथ ये गीत यहीं खत्म होता है। आप सुनते रहिए हमेशा रोजाना उजाला रेडियो 24 घंटा लगातार।
1: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।